0: Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3ZZZ.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Hindi.
3: मैंने नहीं सोचा था कि यह नौकरी मेरे लिए होगी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मेरे पास पहले से जो कौशल हैं, वे बिल्कुल वही हैं जो मुझे एक अच्छी जेल अधिकारी बनने के लिए चाहिए थे। अपने बातचीत के कौशल का उपयोग करना और एक अच्छी रोल मॉडल बनना, और इस सब का अनुभव मुझे मेरे सहयोगी साथियों के साथ होता है। यदि आप भी अपने कौशल का उपयोग करके एक ऐसा करियर बनाना चाहते हैं जो फायदेमंद और सुरक्षित हो, तो अभी आवेदन करें। सर्च करें करेक्शंस विक्टोरिया करियर्स, विक्टोरियन सरकार, वन ट्रेजरी प्लेस, मेलबोर्न द्वारा अधिकृत।
0: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM।
4: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं, अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार, मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
0: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM।
5: पेश है साइंस वर्क्स में नई और जीवंत प्रदर्शनी, कलर सी द वर्ल्ड इन अ न्यू लाइट। यहां देखें चमकते खनिज, ट्रिकल भ्रम और बच्चों के लिए रोमांचक हाथों से किए जाने वाले व्यवहारिक प्रयोग, साथ ही बड़ों के लिए भी भरपूर आनंद। रंगों को देखें, रोशनी के साथ खेलें और इन सब से आपको विस्मित करने वाली प्रदर्शनी अब साइंस वर्क्स में खुल चुकी है। टिकट बुक करें museumsvictoria.com.au।
0: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM।
6: वेरी बी ओपन रेंज ज़ू में हाथियों के बारे में जानें, एलिफेंट ट्रेल की सैर करें और इन शानदार वन्य जीवों का उनके विशाल प्राकृतिक आवास में अनुभव लें। हाथियों के झुंड को एक साथ देखें और उनके अनोखे रिश्तों और व्यवहारों को जानें, जो उन्हें इतना अद्भुत बनाते हैं। आज ही zoo.org.au पर अपनी यात्रा की योजना बनाएं।
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM।
7: सही सेवाएं उपलब्ध हैं, सही जानकारी भी उपलब्ध है, लेकिन हमारा समुदाय हमेशा उन्हें ढूंढ नहीं पाता। डाइवर्स एबिलिटीज इसे बदल रहा है। एक निशुल्क बहुसांस्कृतिक प्लेटफॉर्म जहां आप अपनी भाषा में सेवाएं, जानकारी, कार्यक्रम और समुदाय से जुड़ने के अवसर पा सकते हैं। इस महीने निशुल्क जुड़ें और $50 का वेस्टफील्ड वाउचर जीतने का मौका पाएं। डाइवर्स एबिलिटीज हम सभी के लिए। 1300-013-727 पर कॉल करें या अधिक जानकारी के लिए 3ZZZ.com.au पर जाएं।
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM।
8: मोबाइल स्पीड कैमरों के लिए बाएं मुड़े, पुलिस मोटरसाइकिल यूनिट के लिए दाएं मुड़े, जीवन के लिए खतरनाक दुर्घटना की स्थिति में सीधे आगे जाना जारी रखें।
9: आपकी छुट्टी कैसे खत्म होती है, यह आप पर निर्भर है। अगर आप तेज गाड़ी चलाते हैं, चाहे थोड़ा सा भी, तो यह गलत बात है। TAC की ओर से एक संदेश।
1: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM।
5: मेलबर्न म्यूजियम की नई भव्य प्रदर्शनी रोम एम्पायर पावर पीपल अब खुल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नहीं देखे गए 180 अद्भुत ऐतिहासिक अवशेषों के साथ जानिए ऐतिहासिक रोम की विलासिता, ग्लैडिएटर्स का रोमांच और आम रोम के लोगों का जीवन। मूर्तियों और मोज़ेक से लेकर आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं तक प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ जानें। बुक करें रोम एम्पायर पावर पीपल museumsvictoria.com.au।
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
10: We might all be different, but one thing unites us. We're all Victorians and we all deserve a say in its future. Are you ready to vote this state election Saturday 28 November? Not sure? Check your enrolled online. If you've changed your name or address, update your details. And if you've turned 18, you must enrol. So come on, Victoria. Make sure you're enrolled by 8pm Tuesday 3 November and make your voice heard. Visit vec.vic.gov.au to enrol today. Authorised by S. Bloomel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
11: अगला कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होगा। 1992 से चला आ रहा 2025 में ऑस्ट्रेलियन नेशनल बेस्ट एथनिक प्रोग्राम से सम्मानित भारतीय और ऑस्ट्रेलियन संस्कृतियों को जोड़ता मेलबर्न वासी भारतीय प्रवासियों द्वारा रचित दिलों दिमागों और मुद्दों को जोड़ता आपके साथ गाता गुनगुनाता हर सप्ताह आता आपका हिंदी का गीतांजलि कार्यक्रम एक बार फिर आ गया है। अधिक जानकारी के लिए www.3ZZZindian.org। आइए मिलते हैं आज के कार्यक्रम से।

0: यादों की बारात फिल्म का ये प्यारा सा प्रेम के सागर में डूबा रोमांस का आभास कराता हुआ गीत हम सभी ने पसंद किया, गुनगुनाया पिछले कई दशकों से। गिलासों के टकराने की आवाज सुनते ही मन में स्वर एकाएक दस्तक देने लगते हैं कि आप अपनी रोमांटिक दुनिया में बस खोने से लगते हैं। दोस्तों, विवेक कुमार का 92.3 FM गीतांजलि पर प्यार भरा नमस्कार।
1: और मैं हूँ मीनू, आप सभी का स्वागत आज के गीतांजलि कार्यक्रम में। सही कहा आपने, रोमांस शब्दों का मोहताज नहीं होता है, ये आंखों और इशारों की बोली खूब समझता है। आवाज चाहे दो गिलासों के टकराने की हो या फिर निगाहें मिलने पर दिल के धड़कने की हो, आपके प्रियजन तक तो प्रेम का एहसास पहुंच ही जाता है।

0: के एहसास की बातें और ये प्यारा रोमांटिक गीत, क्या हम वैलेंटाइंस डे को याद कर रहे हैं? क्या चल रहा है आपके मन में? आज के इस शाम गीतांजलि कार्यक्रम में पेश करने के लिए
1: आज हम थोड़ा प्रेम, रोमांस, इश्क, आशिकी के एहसास को हवा देंगे। कोई जरूरी नहीं कि हम साल भर इंतजार करें फरवरी का कि हम गुलाब का फूल, चॉकलेट का डिब्बा लेकर हाथों में वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करें और फिर नॉर्मल डे टू डे दिनचर्या में खो जाएं, या फिर यूं ही मामूली तौर पर दिन को बिताएं। शेर अर्ज है इसी बात पर, जिंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए, जिंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए, रूठ कर वक्त गंवाने की जरूरत क्या है।
0: वाह वाह, बहुत खूब कहा और सटीक फरमाया आपने। कितना खूबसूरत हो कि हर दिन वो समा हो प्यार की खुशबू बिखरने का, मुस्कुराने का और एक रिश्तों में ताजगी लाने का।

0: ये प्रेम इश्क मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जो रिश्तों को एक खूबसूरत रंग देता है। दो शख्सों के बीच जो कभी अनजान थे एक दूसरे से, उनको ऐसा मिलाता है कि कुछ ही पलों में या फिर कुछ दिनों में बाकी सारे रिश्तों से अलग एक अलग दुनिया सजा लेता है।
1: सही कह रहे हैं आप वैसे। और फिर ये प्रेमी प्रेमिका के रूप में अपने इस रिश्ते को लेकर सातवें आसमां पर उड़ने लगते हैं। एक दूसरे से इस कदर खो जाते हैं कि कुछ अपनी सपनों की दुनिया में इस हद तक कि अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं या कुर्बान कर देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: पता नहीं किस हद तक इश्क में ये एक्सट्रीम हमें समझ नहीं आती है।
0: ये तो है, यही तो है इश्क, आशिकी की अनोखी दुनिया।

0: पिछले तीन दशकों से आपका अपना इंडियन प्रोग्राम गीतांजलि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 3ZZZ 92.3 FM का एक अहम हिस्सा है। 3ZZZ.com.au वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मेंबरशिप लेकर अपना सपोर्ट आपके लोकल इंडियन रेडियो स्टेशन को दीजिए। एनुअल मेंबरशिप $16, सीनियर या कंसेशन कार्ड होल्डर्स मात्र $11। योर सपोर्ट इज द लाइफ लाइन ऑफ दिस स्टेशन। थैंक यू।
1: बात आशिकी या प्रेम की चल रही है तो एक पहलू इसका जो पॉजिटिव दिखता है, वहाँ मिलन प्रेमी प्रेमिकाओं का सफल होता है, खुश खुश हैप्पी एंडिंग वाला। इसका और उन किस्सों को कहानियों को सुनते चले आए हैं जो इनफैक्ट सफल नहीं रही है, पर हम सभी उनकी मोहब्बत की मिसाल देते हैं। ये मेरी समझ में से परे है एक्चुअली, कि अक्सर सोचते हैं कि इस बारे में कि मतलब जिनका वो सफल नहीं हुआ लेकिन हम उन्हीं की मोहब्बत का मिसाल देते हैं।
2: कि मतलब किस हद तक चले गए, थोड़ा सा वहाँ मुझे पजल तो करता है ये बात। तो मतलब चिट भी मेरा और पट भी मेरा कि सफल हो गए तो भी मोहब्बत अच्छी, और
1: जो सफल होते हैं उनका हम एग्जांपल नहीं देते हैं, उनकी
2: आपका
1: नहीं है।
2: आपका इशारा जैसे श्री फराद या लैला मजनू
1: या सोनी वो महिवाली समझ लीजिए।
2: हाँ, तो इनकी और है बिल्कुल। इनकी कहानी प्रेमी प्रेमिकाओं की मिसाल के तौर पर तो मानी जाती है। चलिए इनमें से एक कहानी श्री फरहाद की उठाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आगे बातें करेंगे। आर्मेनिया के बादशाह की बेटी शीरी और एक मामूली शख्स फरहाद की यह है प्रेम कहानी। आर्मेनिया के बादशाह की बेटी शीरी बहुत खूबसूरत थी। पर्शिया के बादशाह खुसरो शीरी की तस्वीर देखकर ही उस पर फिदा हो गए थे। उन्होंने अपने सिपाहियों से शीरी के साथ शादी का प्रस्ताव भिजवाया। शीरी ने खुसरो का यह प्रस्ताव मान लिया लेकिन उनके सामने एक शर्त रखी। शीरी ने कहा कि अगर खुसरो पर्शिया के लोगों के लिए दूध का दरिया बनवाते हैं तो उनसे शादी करने को तैयार है। खुसरो ने यह शर्त स्वीकार कर लिया, दरिया बनवाने का काम शुरू करा दिया और उसके बाद शीरी ने खुसरो से शादी कर ली। नहर खुदवाने का काम खुसरो ने फरहाद नाम के एक शख्स को दिया था जो एक मामूली सा लेबर था। बादशाह ने फरहाद को शीरी से मिलवाया ताकि उनकी सलाह पर फरहाद नहर की खुदाई कर सके। पहली मुलाकात में शीरी को देखते ही फरहाद उसका दीवाना हो गया। वो शीरी से पागलों की तरह मोहब्बत करने लगा। शीरी के नाम की रट लगाते लगाते फरहाद ने नहर की खुदाई शुरू कर दी। फिर एक दिन मौका मिलते ही फरहाद शीरी के कदमों में झुक गया और अपने इश्क का इजहार कर दिया। शीरी फरहाद की ये हरकत देखकर उनको बहुत बुरा लगा और वो वहां से चली गई। फरहाद पर शीरी के प्यार का जुनून सवार हो गया था। उसने नहर खोदने में अपनी पूरी जान लगा दी। फरहाद के इस जुनून की खबर बादशाह तक भी पहुंच गई। जब उसे उनकी इस बात की जानकारी मिली तो वो आग बबूला हो गया। फरहाद ने बिना डरे खुसरो बादशाह के सामने शीरी के लिए अपने प्यार का इजहार कर दिया। गुस्से में बादशाह ने तलवार से उसका सिर कलम करना चाहा लेकिन उसके वजीर ने उसे रोक लिया। वजीर ने खुसरो को सलाह दी कि वो फरहाद से कहे कि अगर वो अपनी मेहनत से पहाड़ियों के आर पार सड़क बना देगा तो वो शीरी से उसका निकाह कर दिया जाएगा। वजीर को इस बात का पूरा यकीन था कि फरहाद ये काम कर ही नहीं पाएगा, लेकिन दीवाने फरहाद ने यह शर्त स्वीकार कर ली। अपनी मोहब्बत की खातिर फरहाद दिन रात काम करके सड़क बनाने लगा रहा। आखिर उसकी बेइंतहाई मोहब्बत ने शीरी का दिल जीत ही लिया। सड़क पूरी होते देख बादशाह घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने फरहाद के पास झूठी खबर पहुंचा दी कि शीरी ने आत्महत्या कर ली है। ये खबर सुनते ही फरहाद पागल हो गया। वो दीवारों से सिर पटक पटक कर चिल्लाने लगा और अपने सिर पर कुल्हाड़ी मार कर जान दे दी। जब शीरी को फरहाद की मौत का पता लगा तो वो दौड़ी दौड़ी उस जगह पहुंची जहां फरहाद ने दम तोड़ा था। बादशाह के छल का पता चलने पर शीरी ने महल लौटने से इनकार कर दिया और फरहाद के कदमों में ही दम तोड़ दिया। इन दो अमर प्रेमियों को एक साथ दफन किया गया। इनकी मोहब्बत एक मिसाल बन गई जो आज भी जिंदा है श्री फराद के नाम से। पहुंची जहां फराद ने दम तोड़ा था। बादशाह के छल का पता चलने पर शीरी ने महल लौटने से इनकार कर दिया और फराद के कदमों में ही दम तोड़ दिया। इन दो अमर प्रेमियों को एक साथ दफन किया गया। इनकी मोहब्बत एक मिसाल

0: पिछले 3 दशकों से आपका अपना इंडियन प्रोग्राम गीतांजलि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 3ZZZ 92.3 FM का एक अहम हिस्सा है। 3ZZZ.com.au वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मेंबरशिप लेकर अपना सपोर्ट आपके लोकल इंडियन रेडियो स्टेशन को दीजिए। एनुअल मेंबरशिप $16, सीनियर या कंसेशन कार्ड होल्डर्स मात्र $11। योर सपोर्ट इज द लाइफलाइन ऑफ दिस स्टेशन। थैंक यू। प्रेम और मोहब्बत के इस खास सफर में आप हैं मीनू और विवेक के साथ। गुफ्तगू जारी रहेगी प्यार भरी बातों के साथ, प्यारे प्यारे गीतों के संग। थोड़ा हल्की हल्की लाइटर बातों के साथ आगे बढ़ते हैं मीनू जी। प्यार को हमने अलग अलग तरह से अलंकृत होते सुना है, कहानियों में, कविताओं में, बातों में, चर्चाओं में, क्यों? तो यानी अक्सर को भी कहते हैं कि प्यार कभी सच्चा प्यार कहते हैं तो कभी झूठा प्यार कहते हैं, तो कभी गहरा प्यार या खोखला प्यार, जैसे बातें सुनाई देती हैं, क्यों?
1: जी हाँ, असली और नकली प्यार, प्यार अंधा भी होता है। चलिए, आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब लव इज ब्लाइंड, डू यू एग्री?
0: मेरी सोच ये कहती है कि सच्चा प्यार या सच्चा प्रेम वो है कि जिससे हम प्यार करते हैं, हम यही चाहते हैं कि वो शख्स हमेशा खुश रहे, सदा सुखी रहे, और उसी के सुख में अपना सुख नजर आता है, एक सुकून मिलता है। जहां इस बात में कुछ लोचा हो जाए कि जैसे आपका सेल्फिश इंटरेस्ट या आपका अपना फायदा नजर सोच आगे आए, जैसे कि मोहब्बत करने पर हमको एक बेहतर नौकरी मिल जाएगी, ऐसे में सच्चा प्यार न रहकर वो झूठा प्यार ही कहलाएगा।
1: तो बहुत सारे प्रेम में सैक्रिफाइसेस भी देखे हैं। अगर लाइक दूसरे पार्टनर को लगता है कि मेरे से शादी करके क्या उसको हासिल होगा, तो वो कई बार वो सैक्रिफाइस भी कर लेते हैं कि अपने आप को गंदा दिखा देंगे। या
0: मतलब समझे नहीं।
1: कितनी मूवीज हुई हैं जिसमें लाइक आपको दूसरे पार्टनर

0: के बारे में सोचते हो, प्यार तो हो जाता है लेकिन आप सोचते हो कि नहीं वो ऐसे में मेरे हालत के साथ वो खुश रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, तो लाइक दे सेक्रीफाइस समटाइम्स लाइक देयर लव बिकॉज आप मतलब, दूसरे पार्टनर की खुशी देख रहे हो ना.
1: हाँ तो मतलब कि आपने तो मतलब विड्रॉ करके आपने वो करा सॉर्ट ऑफ यस ओके.
0: सच्चा प्रेम होने पर आपको यानी दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को आत्मविश्वास जगाता है, वैसे तो एक सुकून दिलाता है. और हाँ एक बात और है, सच्चे प्रेम की पहचान तभी होती है जब आपका प्रेमी या प्रेमिका किसी मुसीबत और परेशानी में पड़ी हो. जीवन का एक कठिन पल ये टेस्टिंग टाइम होता है.
1: ओके.

0: एक तरफ ये रोमांटिक गीत वेनिस की नहरों पर फिल्मों में ही सही पर देखा तो, और दूसरी ओर मोहल्ले के कुछ चुटकीले जोक्स भाई कंफ्यूज कर देते हैं सोचने पर यार की आशिकी की दरिया में कूदे या फिर बच के साइड से निकल ले।
1: अरे ऐसा क्या कंफ्यूजन किस बात की बताइए।
0: कंफ्यूजन, अरे मतलब अब ये कुछ जोक सुनिए आपको। प्रेमी प्रेमिका में एक बार झगड़ा हो गया। अब प्रेमी उस झगड़े में खामोश हो गया और पिछले 20-25 मिनट से कुछ बोला ही नहीं। प्रेमिका ने काफी कोशिश करी लेकिन वो खामोश। प्रेमिका बोली कि मैं 10 तक गिनूंगी, अगर तुम ना बोले तो मैं जहर खा लूंगी। प्रेमी फिर भी खामोश। प्रेमिका ने बोलना शुरू करा, गिनना शुरू करा। 1, प्रेमी खामोश। 2, प्रेमी खामोश। 3, 4, 5, वो 7 तक पहुंच गई प्रेमिका बोलते बोलते, लेकिन प्रेमी साहब टस से मस नहीं हो रहे थे, वो बोल के नहीं दे रहे थे। अब 7 पर आके प्रेमिका जो है वो घबराने लगी, रोने लगी और अब गिड़गिड़ा रही थी कि बोलो कुछ तो बोलो। अब प्रेमी ने कहा कि भाई आगे की गिनती गिनो यार, मतलब। तब प्रेमिका ने कहा थैंक गॉड आप बोले तो, वरना आज तो मैं कहीं ऊपर की दुनिया में चली जाती।
1: क्या ट्रैप में फंसाया था उसने, लाइक बोल दिया फाइनली।
0: यस, सो एक जोक और पेश खिदमत है इसी संदर्भ में। एक भाई ने कुछ ऐसा किस्सा सुन लिया कि वो बड़े आशिकी से घबराने से लगे। अब पूछिए कि किस्सा क्या था।
1: हाँ, पूछ रहे हैं, बोलिए बताइए।
0: एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बाग में हाथ डाले घूम रहा था, एक साहब थे मतलब, और माहौल रोमांटिक था ऑब्वियसली। अचानक वहां पर दो शरारती टीनेजर्स आ गए और एक उन लोगों के पास आके उस आदमी से बोला कि अंकल कल वाली ज्यादा अच्छी थी। तो इसके बाद क्या हुआ इसकी आप सिर्फ कल्पना कीजिए। अब यही सब सारे रिस्क है जिनका आपको या कपल्स को ध्यान देना होगा अगर रोमांस की दुनिया में आप कदम रख रहे हैं। मतलब ये सारे रिस्क हैं भाई साहब, ठीक है, उनको आपको हैंडल करना पड़ेगा।

0: अभी रिसेंटली हमने एक पब्लिक स्पीकर जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काफी पॉपुलर भी हैं, उनको इस प्यार के सब्जेक्ट पे बोलते सुना। इनका नाम है संदीप माहेश्वरी। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी उनके बारे में सुना होगा, वो काफी सब्जेक्ट्स पे बोलते हैं। ये 44 वर्ष के और दिल्ली से हैं, काफी इंस्पायरिंग बातें करते हैं, शायद इसलिए लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। चलिए एक क्लिप उन्हीं के शो के शेयर करते हैं, जहां वो एक लड़की के प्रश्न को रिस्पॉन्ड करते हैं। पता है क्या प्रश्न था?
1: क्या?
0: प्यार कितनी बार होता है? सुनिए, प्यार भी बहुत बार होता है भाई।
2: सर, इस क्वेश्चन से ना मैं 6 महीने से परेशान हूँ, आप प्लीज का आंसर।
3: 6 महीने से परेशान हो इस क्वेश्चन के लिए?
2: हाँ सर।
3: आप क्या क्वेश्चन है?
2: आप कहते हो कि प्यार वो होता है अंदर से आए, वो नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ। सर मैंने लोगों को देखा है, 7-7 बार प्यार होता है, शादी के बाद प्यार होता है।
3: अब आया पंडर लोगों को मजा, क्या करियर वरियर के क्वेश्चन पूछते हैं? प्यार, इश्क, मोहब्बत।
2: सर मतलब कितनी बार हो सकता है? मतलब
3: ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये समझना इम्पोर्टेंट नहीं है कि प्यार कितनी बार होता है नहीं होता है, ये समझना इम्पोर्टेंट कि प्यार क्या है। हम कंफ्यूज किस में हो जाते हैं? हम रिलेशनशिप और प्यार में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम किसी के साथ रिलेशनशिप में, इसका मतलब प्यार भी है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक है रिलेशनशिप, एक है प्यार। ऐसा हो सकता है कोई बंदा पूरी लाइफ के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप में प्यार में रहे नहीं। तो वॉट इज रियल लव? जब आप सामने वाला जो पर्सन है, जरूरी नहीं आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो। जैसे मैं आप लोगों के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ, लेकिन अगर आपकी आंखों में मैं खुद को देख सकता हूँ, क्या ये पॉसिबल है?
4: Yes,
3: sir. हाँ, आप बोल तो रहे हो यस सर, बट हाउ इज इट पॉसिबल? एक्चुअल में अगर मैं आप लोगों की आंखों में खुद को देख लेता हूँ और खुद में आपको देख लेता हूँ, इसको प्यार कहते हैं। क्योंकि वहां पर कोई सेपरेशन नहीं रह जाता है बीच में। जहां पर भी दो होते हैं, मैं हूं ये, तू है वो, तो वहां पर प्यार होना इम्पॉसिबल है। वहां पर रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ देर के लिए अटैचमेंट हो सकती है, लेकिन जैसे ही दोनों को एक दूसरे से जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, तो उसके बाद में वो क्रेज खत्म हो जाता है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कुछ और है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स, जिसको हम प्यार समझते हैं, या इवन टुवर्ड्स द सेम सेक्स, तो रूलिंग आ गई है। हाँ, और इसमें हंसने वाली बात नहीं है। हम क्या समझते हैं, इसको हम प्यार का नाम दे देते हैं, फिर ऑफिशियली उस पर ठप्पा लगा दिया कि अभी हस्बैंड वाइफ है तो अब तो प्यार करना ही पड़ेगा, क्या करें ना करें, तो जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर भी कोशिश है वहां पर प्यार नहीं, जहां पर दो है वहां पर प्यार नहीं है, जहां पर सेपरेशन है वहां पर प्यार नहीं है, जहां पर ये सेंसेशंस हैं जिसको हम प्यार बोलते हैं, वो सेंसेशंस नहीं है, केमिकल लोचा नहीं है, ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं, अरे मुझे उससे प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, फिर किसी और को देख के केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, होते नहीं होते हैं, देख रहे होते हैं उसको, सोच रहे होते हैं किसी और के बारे में, उसको लग रहा है उसकी वजह से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, हो रहे हैं किसी और की वजह से, ये सब कहानियां होती है नहीं होती है? रिलेट कर पा रहे हो? अपनी ब्रेन में झांक के देखोगे आपको सब समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं। कुछ भी नहीं है, वो प्यार है। बीच में कुछ भी है तो वो प्यार नहीं है, एक दूसरे की जरूरत है। मुझे भूख लगी और अपनी उस भूख को पूरा करने के लिए मैं सामने वाले को यूज कर रहा हूं, उसको हम प्यार बोल देते हैं। इन प्यार का मतलब है इस तरीके से जुड़ जाना कि जहां पर अलग होने की गुंजाइश ही ना हो। ज्यादा हो रहा है? हाँ सर, अच्छा है, अच्छा सर, मजा आ रहा है सर, मुशायरा बढ़िया चल रहा है सर, समझ नहीं आ रहा है, बढ़िया।
1: भैया सुना तो हम क्लिप, भाई बाउंसर थोड़ा मेरे लिए रहा, माफ कीजिएगा, मुझे सवाल का उत्तर ठीक से मिला नहीं। हाँ ये है कि प्यार जो है वो होता है और हो सकता है, और जहाँ पर ये नहीं है तो ये तो मल्टीपल बार हो सकता है, जहाँ पर ये वो, बट फिर भी आई लिव इट देयर। अच्छा था, अच्छी अच्छी बातें थी। ओके, यही सुनते हैं बैठ के कि ये प्यार जो है कुछ कुछ होता है।

प्यार की कहानियों में जब तक कि पॉजिटिविटी रहे, अच्छा रहे, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तो कोई बात ही नहीं है, तब तो फिर हंकी डोरी सब। लेकिन जैसा कि हमने पहले एक कहानी में सुना, इसी तरह से कहानियों में कभी कभी प्यार के किस्सों में एक धोखा आ जाता है, जब कोई थर्ड पर्सन आके आपके प्यार को सत्यानाश कर देता है। कहानी प्यार की अमर तो हो जाती है, लेकिन उन दोनों के लिए कहानी आगे बढ़ती नहीं है, खत्म सी हो जाती है। अब जैसे हीर रांझा की कहानी लीजिए, तो उसमें उनके जो एक जेलस अंकल थे, उनको जलन के मारे जो है उन्होंने इस रिश्ते में ऐसा पॉइजन कर दिया और कि हीर को मार दिया इन्होंने, और फिर राजा ने अपने आप को सुसाइड कर लिया। तो ये तो कोई उनके अंकल थे। अब आप अनारकली और सलीम की कहानी तो हमने सबने सुनी है, जब प्यार किया तो डरना क्या। अकबर साहब ने अपने बेटे को के प्यार को उन्होंने सफल ना होने दिया, अमर ही कर दिया, बस यूं समझ लीजिए। और वो अपने बेटे के प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जैसा कि हमने अपनी मुगले आजम फिल्म में देखा। भाई हमने तो वही कहानी वहीं से देखी है और वही कहानी हमारे सामने आगे से गुजरती है। अल्टीमेटली जो है वो अनारकली सेक्रीफाइस कर लेती है सिर्फ इसलिए कि सलीम उसका सलामत रहे, और वो वहां से अलग कहीं दूर बेनामी की जगहों पे भेज दी जाती है। ये है कि जहाँ पर एक अनार अकबर जैसे पिता ने अपने बेटे सलीम के प्यार को, ये प्यार है, अलग अलग लोग बीच में आते हैं समाज में, फैमिली से या कोई और हादसा होता है या कोई दुखद चीज़ें हो जाती हैं, कहानी प्यार की अमर रहती है अगर प्यार सच्चा है।

0: आप सुन रहे हैं गीतांजलि पर कुछ बातें विवेक और बीनू के साथ मोहब्बत इश्क के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं खास सेगमेंट पर जो शेरो शायरी और कविताओं की ओर ले चलेगी हमें।
1: अरे जब बात मोहब्बत की हो तो दिल की धड़कनें खुद ब खुद एक नज्म गुनगुनाने लगती है, क्यों सही कहा ना?
0: हाँ बिल्कुल मीनू जी, इसीलिए ये खास सेगमेंट समर्पित है उन अनकहे जज्बातों को जिन्हें शायरों और कवियों ने शब्दों में खूबसूरती के साथ पिरोया है। चलिए महसूस करते हैं ना।
1: चलिए, उर्दू अदब के बेताब बादशाह मिर्जा गालिब ने मोहब्बत को बड़ी ही सादगी और गहराई से बयां किया है। वो आज भी हर आशिक के दिल की आवाज है।
0: क्या बात है, गालिब का ये शेर इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश है गालिब के लगाए न लगे और बुझाए न बुझे।
1: विवेक जी मजा आ गया है, इस शेर में पूरी कायनात का फलसफा छिपा है। मोहब्बत को सोच समझ कर किया जाने वाला फैसला नहीं है। गालिब साहब का एक और मशहूर शेर अर्ज है, दिले नादान हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है।
0: हाँ हाँ, ये बड़ी ही खूबसूरत गजल है उसका। तो ये वो आग है जो दिल में खुद ब खुद सुलगती है, आप चाहे भी तो इसे रोक नहीं सकते। एक उन शायर जिनकी मोहब्बत में एक अजीब सा पागलपन था, जॉन एलिया साहब। क्या फरमाते हैं साहब, सुनते हैं। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्म ए दूरी, कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम।
1: सही बात तो उनकी बिल्कुल 100% सही है।
0: ये वो मोहब्बत है जो बिछड़ने पर भी अपनी डिग्निटी नहीं खोती, क्योंकि सेपरेशन पर कभी कभी जो है लोग पागल ही हो जाते हैं।
1: सही कहा आपने। गालिब के इस एहसास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं,
0: ठीक है,
1: और रुक करते हैं हिंदी कविता की तरफ। आधुनिक मीरा कहा जाने वाली महादेवी वर्मा को कैसे भूल सकते हैं। ये पंक्तियां सीधे दिल को छूती हैं। मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूँ, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा।
0: यह मोहब्बत पाने की जिद नहीं है, यह मोहब्बत की याद में तड़पना ही सबसे बड़ा सुख बन जाता है। इसे कहते हैं इबादत वाली मोहब्बत।
1: वाह क्या बात है।

0: मीनू जी, मैं अब एक ऐसी सच्ची और ऐतिहासिक मोहब्बत की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये सच्ची और ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि आधुनिक भी है।
1: अच्छा।
0: मतलब जैसे मैंने आपको पुराने शीरी फरहाद या लैला मजनू की बातें करते हैं उनके रेफरेंस में। अब ये कहानी है उड़ीसा के एक बेहद साधारण से गरीब आर्टिस्ट पीके महानंदिया और स्वीडन की एक अमीर रॉयल फैमिली की लड़की शार्लेट की।
1: अरे वाह, उड़ीसा से स्वीडन, ये कनेक्शन कैसे हुआ?
0: तो सुनिए, पीके महानंदिया ये एक गरीब दलित फैमिली को बिलोंग करते थे और ये उड़ीसा से थे, एक उड़ीसा के एक छोटे से गांव में, ठीक है। और अब ये जो उनको जब वो पैदा हुए थे तो उस वक्त उनके परिवार में उनकी एक एस्ट्रोलॉजर ने इनके बारे में एक भविष्यवाणी करी थी कि उनकी शादी एक उसी एक ऐसी लड़की के साथ होगी जो किसी दूसरे देश की होगी, संगीत जानती होगी, उसकी राशि वृष या टॉरस होगी और साथ ही साथ उसके बहुत सारे जंगल या लैंड होंगे, मतलब इस तरह की बातें लिखी हुई थी, बड़ी अजूबी अजूबी। अब देखिए, अब आइए 1975 में वापस। ये उस वक्त दिल्ली में कनॉट प्लेस में बैठकर स्केच बनाते थे, ये स्केच आर्टिस्ट होते थे।
1: अच्छा,
0: ठीक थे, गरीब थे लेकिन उनका एक ये स्किल जो है वो बड़ा जबरदस्त था और वो बनाते थे। तो अब हुआ ये कि ये यहां बैठे थे, अब एक दिन उनकी जिंदगी में एंट्री हुई स्वीडन की रहने वाली शार्लेट की, वो भारत घूमने आई हुई थी।
1: Oh my God, क्या वो भविष्यवाणी सच हुई?
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए तो, जब पीके महानंदिया ने शार्लेट का सामना हुआ, ये शार्लेट अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पर घूमने आई हुई थी भारत स्वीडन से, और जब वो इनसे भेंट हुई तो कुछ इंटरेस्ट जागा, इन्होंने इनकी शार्लेट की स्केच बनाई।
1: अच्छा,
0: ठीक है, और कुछ बातें हुई, इंटरेस्टिंग बातें करते करते वो फिर से मिली और उन्हें आपस में एक प्यार सा हो गया।
1: ओके।
0: और अब कट शॉर्ट, ये फिर उड़ीसा जाते हैं साथ में उसको लेकर और वहां पर उनका शादी होती है। शादी तो हो जाती है लेकिन शार्लेट आई थी स्वीडन से और वहां से उनको वापस जाना पड़ा।
1: यही तो सबसे मुश्किल वक्त होता है किसी भी लव स्टोरी का, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे क्या हो।
0: हाँ, तो अब वो उनको वापस जाना पड़ा। तो वो जब वहां पर चली गई उसके बाद शार्लेट थी वो रॉयल फैमिली से, ठीक है, मैंने बोला था ना, तो वो रॉयल फैमिली से थी, इन्होंने उनको वहां से संपर्क स्थापित किया, उन्होंने कहा मैं आपको जो भी ट्रैवल टिकट जो भी है सब करती हूँ, ये थे स्वाभिमानी उसके प्रकृति के, इन्होंने उसको मना करा, उन्होंने कहा देखिए मैं आऊंगा तो जरूर लेकिन मैं अपने आप से इसमें साधन इकट्ठे करके आपके पास पहुंचूंगा। उसके बाद क्या हुआ कि 2 साल बीत गए, ठीक है, वो ये सब जद्दोजहद करते हुए अब उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और जी हाँ, पुरानी सेकंड हैंड साइकिल, और दिल्ली से स्वीडन के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स बेच बेच कर रास्ते का खर्च निकाला, मतलब स्केच और पेंटिंग्स के सहारे से, और वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की होते हुए लगभग 5 महीने से ज्यादा चलकर साइकिल से चला चलते चलते वो स्वीडन पहुंचे।
1: ये तो अनबिलीवेबल सी बात है, सिर्फ अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए कोई इतनी दूर साइकिल से कैसे जा सकता है? रास्ते की मुश्किलें, थकान, कुछ भी उनके प्यार के आगे नहीं टिक पाया।
0: हाँ हाँ भाई, ऐसा ही हुआ है, ये एक सच्ची घटना है मैडम। और हाँ बिल्कुल मीनू जी, जब वो स्वीडन पहुंचे तो शार्लेट की फैमिली ने उनकी मोहब्बत देखकर उन्हें गले से लगा लिया, और आज भी, यानी कि देखिए ये बात 1977 की है, 77 की, और आज 2026 उसमें भी ये लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं।
1: वाह, इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बतें जो सरहदों को, पैसों को और हर नामुमकिन दूरी को छोटा कर देती हैं।
0: पीके महानंदिया जी को ऑफिशियली कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्वीडन के उस पे उपाधि पर हैं अभी करेंटली, ठीक है, और इनको इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट भी उत्कल यूनिवर्सिटी ने अवार्ड करी थी, जिसकी वजह से ये डॉक्टर पी के महानंदिया के नाम से जाने जाते हैं।

0: आज हम गीतांजलि के अंतिम पड़ाव की ओर आ चले हैं और बहुत सारी इधर उधर प्यार आशिकी की बातें करी, कुछ शेरो शायरी, कुछ प्यारे प्यारे गीत भी सुनाए, मजा आया। लेकिन कितनी सारी एंडलेस बातें इस सब्जेक्ट पे हो सकती हैं, क्यों?
1: हाँ, ये सब्जेक्ट तो काफी दिलचस्प है और कुछ गंभीर भी है। मतलब ये तो आपके अपने अलग अलग समझने के लोगों के वो है पहलू, अलग अलग पहलू हैं लोगों के और साथ ही साथ अलग अलग सोच भी है।
0: ये तो है। अब इस बचे कुछे गीतांजलि के समय में एक खास सोचने वाली बात को हम डिस्कस जरूर करना चाहते हैं, जो कि मेरे दिमाग में इसी प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार करते वक्त आ पड़ी थी।
1: वो क्या है, जरा हम भी सुने।
0: ये कि ये मैं अपने मन की नहीं बल्कि एक कपल थेरेपिस्ट हैं जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका टाइटल है टेल मी द ट्रुथ अबाउट लव, और इनका नाम है सुसाना ऐप से। तो उनका एक आर्टिकल अभी हाथ लगा और उस आर्टिकल का जो विषय था वो इस तरह से था, ये न्यूज़पेपर में आया था गार्डियन में, टेल योर पार्टनर यू लव देम नॉट जस्ट ऑन वैलेंटाइंस डे बट एवरी डे। तो ये चूंकि मैं ये इस प्रोग्राम की रूपरेखा पे काम कर रहा था तो मेरी आंखों में अटका और मैंने उसको देखा। तो इस मुद्दे को लेकर जो उठाया वो सुसाना कहती हैं कि कार्ड्स और रोजेस जो रेड रोजेस की बात होती है इनको भूल जाओ और सेलिब्रेट ईच अदर।
1: हाँ, एवरीडे सेलिब्रेशन।
0: तो उनका जो कहना था, और हम भी ये नोटिस करते हैं पर्सनली कि आजकल वैलेंटाइंस डे कार्ड्स शॉर्ट टर्म बातों पे फोकस ज़्यादा करते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जैसे कि लविंग फॉर एवर, शेयरिंग लाइफ टुगेदर वगैरह वगैरह जैसी फीलिंग्स जो है वो उसमें थोड़ा हल्कापन रहता है।
1: ये तो नए जमाने का कमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो गई है एक्चुअली।
0: हाँ, आप सही कह रहे हो, मतलब जो कमर्शलाइजेशन की वजह से ज़्यादा है ना कि इंडिविजुअल उसको छापते हैं, बट आई मीन जो है सो है, मतलब तो वो देख के थोड़ा सा एक हल्का सा एक कसक सी होती है। तो एक सुसाना ने एक फर्दर उस आर्टिकल में एक किस्सा शेयर किया जिसको मैं शॉर्ट में शेयर करना चाहता हूँ। मतलब बेसिकली वो एक कपल, वो थेरेपी करती थी कपल्स की, कई सालों से करती चली आ रही है। तो एक कपल के बारे में उन्होंने जिक्र किया जो कि करीब करीब 20 साल शादी के हो गए थे, उसमें से उनकी लेडी जो है वो इनके साथ थेरेपी में आई थी। तो वो कहती है कि जो लेडी थी उनको अच्छी खासी उनकी लाइफ चल रही थी, लेकिन वो अब कहती थी सुसाना से कि अब हम इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ मिसिंग रहा है और अभी भी मिसिंग चल रहा है। तो उनको घर में हर तरह के उनको सुख थे, लेकिन उनका ये कहना था कि ऐसा लगता है अब मैं एहसास करती हूँ कि पीछे कभी रोमांस तो रहा ही नहीं सिवाय वैलेंटाइंस डे पे रोजेज आ जाना, चॉकलेट्स देना या एनिवर्सरीज के दिन सेलिब्रेट होना, बट डे टू डे में इनको रोमांस बड़ा मिसिंग लगता था, ऐसा उनका कहना था। लेकिन वो थेरेपिस्ट को बता पा रही थी और वो फीलिंग को अपने पार्टनर से नहीं एक्सप्रेस कर पाई पिछले 20 साल के रिलेशनशिप में। तो सुसाना का यही कहना था कि ये जो है वो फेलियर है कपल्स में जो जेन्युइनली अपनी फीलिंग्स को आपस में शेयर नहीं करते हैं।
1: नहीं, मेरा मानना ये है कि जब हम लोग छोटे थे हमने तो अपने माँ बाप को कभी रोजेज और ये सब नहीं देखा है, बड़ा नेचुरल सा उनका लव।
0: तो वैलेंटाइंस डे तो हमने तो बहुत ही बाद में आके देखा, बाहर आके, कि भाई वैलेंटाइंस डे नाम की चीज होती है।
1: और ये मतलब मेरा मानना है कि आजकल जो है ना लोगों का दिमाग ये टीवी मीडिया ये सब देख के भी ज्यादा ही खराब हो रहा है।
0: ये तो
1: है कि लाइक एक्सपेक्टेशंस ज्यादा बढ़ गई हैं।
0: दैट्स राइट।
1: तो नहीं तो फादर्स डे आपको क्या लगता है कि एक ही दिन फादर की केयर करनी होती है लाइक, या फादर एक ही दिन संडे का होता है,
0: या मदर्स डे या कुछ भी,
1: या माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, दिस इज फैमिली।
0: हाँ, तो लेकिन बस यही बात है कि ये पॉइंट तो सही है, बस इन सब की बीच जो है हमको ये एहसास आपस में दिलाना जरूरी है, मतलब इमोशनली हमें एक दूसरे का ये फीलिंग को जगाए रखना है, ये मतलब मेरा कहना ये है। और सुसाना भी आई थिंक यही कह रही है कि आप एक्सप्रेस करो, मतलब ना कि वैलेंटाइंस डे के दिन एक्सप्रेस करो, एवरी डे एक दूसरे के साथ
1: सेलिब्रेट
0: करो। अब एक्सप्रेस करने का मतलब ये नहीं कि हर समय प्यार की बातें करो, आपका एक्सप्रेशन आंखों से हो सकता है, टच से हो सकता है।
1: कुछ सीधी बात है कि अच्छा आप आज कहाँ घूमने चले हैं, उसके लिए वैलेंटाइंस डे की क्या जरूरत है?
0: कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है, चलिए एनीवेज आज गीतांजलि का सफर जो है अब यहीं पर ख़त्म होता है, और हम आप सभी के साथ बातें करके एक ऐसे सब्जेक्ट पे जिसमें आपके भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, अपने विचारों को शेयर कीजिएगा फेसबुक के पोस्ट पे, पॉडकास्ट के जहां पर हम ये इसको पब्लिश करते हैं वहां पर आप अपने विचारों को शेयर करिए, फीडबैक दीजिए। और चलते चलते सीने में धड़कता जो हिस्सा है उसी का तो ये सारा किस्सा है। और इसी के साथ विवेक कुमार का प्यार भरा नमस्कार।
1: कभी खुशियों की धूप, कभी दर्द की छाव, कभी जीत की आशा, कभी हार की निराशा, बस यही है जिंदगी की छोटी सी परिभाषा। इसी के साथ सभी श्रोताओं को शुभ रात्रि मीनू की तरफ से।
0: Radiothon is back. Extend your support to this studio. Your donation to 3ZZZ helps keep Melbourne's diverse voices on air, connecting people through language, music, news and culture. For more than three decades, 3ZZZ has been a place where Melbourne's multicultural...